विश्राम मंदिर तया तनातनो तनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदायं भक्तिरसामृत सिंधुर् चरत परिभूत काल जाल भक्त्या मकरान शीलता मुक्तीन अधिकान नमस्यामि भक्ति रथस्तपस्तुती रखिलौ भगवन मंगल प्रसंगस्यम अज्ञापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाहयम् ईदस्त भगवद भक्ति रथामृतोपयो निधे चत्यार खलु वक्षन्ति भागा पूर्वा दयक्रमा तत्र पुन्तो विभागेष्मिन् भक्ति भेदो निरूपति अनुक्रमेण भक्त्यज्ञं लहरीनां चतुष्टयं आद्या सामान्य भक्त्याज्ञं द्वितीया साधनांकिता भावास्तुता तृतीयात्र सूर्या प्रेमनुरूपिता तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यं मह्या कथयितुं स्फुटं लक्षणं क्रियते भक्ति रुष्टमाया सतान्वतम् अन्नाभिलाषिता शून्यम्

तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजम चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रकल्पम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणी भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह बहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविंदम भजन्तीह लोके परेव नराणाम् न तावत् सुखम् शांति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिपाशम् न जानामि योगम् जपम् नैव पूजाम् न तोऽहम् सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जरा जन्म दुःखौघ तातम्।